0: करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: JS Home Improvement ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ $500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ $350 ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰਸ $349.99 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ JS Home Improvement, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਬਿਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 9057

क्या बात है, प्रोग्राम है पंजाबी दा। मैं कहण लग्या सीगा ते बहुत ही गर्मा गर्म प्रोग्राम, पर हुण पता नहीं लगदा जी मैं प्रोग्राम गर्मा गर्म पेश कर दिता। अगे यार कड़ाके दी गर्मी है, तुसीं कहोगे नवी यार पहला 35 डिग्री सी, तुसीं प्रोग्राम इन्ना गर्म गर्म करता होना है, लगदा जिवें कि 50 डिग्री टैंपरेचर। सो कोई ना प्रोग्राम थोड़ा ठंडा रखदे आ ते देखदे आ की बनदा।

0: क्या बात है, प्रोग्राम है पंजाबी रन 905-673-3573-3337 अपना फोन नंबर है ते रौनक लग चुकी ने ते तुसी भी जुड़ चुके हो ते थोड़ी कॉलों भी आ रही ने 5095 हेलो
1: ट्रक
0: दी पार्किंग बोल्टन च बोल्टन दे विच यार लभ लैने आ कोई ना कोई सज्जन मित्र होऊगा जिन्हां कोल हैगी आ ट्रक पार्किंग बोल्टन ठीक है कोई ना तो लाभ के देने ठीक है चलो जी बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच तो ट्रक पार्किंग किसी को भी है बोल्टन दस्यो जरा ते बाई जी उन्होंने हेल्प करिए स्टूडियो नंबर है 905

0: 1630.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आजुक प्रोग्राम हेत छुस बे तुंदिस खदमतस मंज हाजिर। बुछुस रमेश मरहटा यमे प्रोग्रामक होस्ट। दोस्तों तुह छु जेतस जे सोई कशीर छे दुनियास मंज इवन सेठा खूबसूरत मान। येटिक पहाड़, जंगल, येटिक दरियाव, येटिक हवा, येटिक बाग, येटिक बाल थुंग, तो येटिक खूबसूरत सेहत अफजा मकामात, यम छ हर कंस पानस कुन रागिब करान। ये छ तरफादो पेठ लोक यम जाय खतर कशीर यवान। दपान कशीर छ मेहमान नवाजी मंज दुनिया हस मंज सरे फिरस्तिवन मान। ये टुक तहजीब, ये टिच कत बात, ये छु लगभग मौसम भावनी रेतनासन सेठा शोभून तो लोभून। दपान दुनियास मंज हसा छ स्विट्जरलैंड खोत कशीर सेठा खूबसूरत, इसलिए छ यत शायरों ते पन्ने पन्ने रंग अल्फाजों सूत ये कशीर रंग नमस। दपान येम न कशीर हुन सर कुर तेम न सबूच कहीं ते दुनियास मंज। अमी छ एक मकबूल शेरन वुर्मुत, अगर बर रुए फिरदोस जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर जमीन पेट कुंजाय जन्नत छो सा सोच यथ कशीर मंज यथ कशीर मंज। चूंकि कशीर हंस कत करान पेश अख बर्थ, इस थो पनी कत बात जारी।

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जिहड़ा सारे फोक डांसिंग कोला जिहड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जिहड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जिहड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपीसोड का एक गीत।

बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना माता माता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वो है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है उस स्पेशली कीता जांदा है देवते दी स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ए ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। तो कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंगी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करुट दे नैट पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिहदे च जिन्ने भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं ये। तो ये स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे दुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्सिया नाग देवता दी स्तुति च भी ए कीता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा कीता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादी च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्ते तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ई ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा के अच्छा लगदा है सारे एक ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: 630.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कभू झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो पंजाबी लहरा दे नाल। उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला के खूबसूरत सवेर का आनंद माण रहे होंगे। पंजाबी लहर नाल जुड़े हुए सारे परिवारों को एक बार फिर प्यार सत्कार आदाब ते प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: Bangalore Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद
2: आई लव इट
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 टू 10 एंड सैटरडे 10 टू 1 ऑन AM 530 नॉन स्टॉप कॉल्स नॉन स्टॉप टॉक्स प्रमोट योर बिजनेस विद अस कॉन्टैक्ट 416-518-3200
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
4: रेडियो आवाज वे

0: एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: ट्रांस खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। जिला नाल बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज सारनिया टू लंडन किचर वाटर कैम्ब्रिज वुडस्टॉक तो लैके पैरिस ब्रैंटफर्ड हैमिल्टन तक, हैमिल्टन तो लैके नैगर फॉल के बॉर्डर तक और ईस्ट के जी टी एंटायर कवर करते हुए असी ईस्ट के असी कर्टिस बोवनविल हैम्पटन ओशवा क्रॉस करते हैं कोबर्ग तक, नॉर्थ ईस्ट के असी सू ऑटवा के रस्ते लिंडसी पीटरबर्ग तक अपने रेडियो सेट से सुन रहे हो। तो मस्कोका काउंटी के लेक एरियाज जिते सारे वेकेशन पर जा रहे समय मैनिटोलन आइलैंड तो लैके ओवन साउंड तो लैके ग्रैवनहस तक 11 और 400 हाईवेज तक दूर दुराडे के एरियाज रेडियो सैट से सुन रहे हो। इंटरनेट की मदद न दुनिया के किसी भी कोने सू www.am530.ca radiowazTorontoCom radiowazTorontoCom के उत्ते जाके या पंजाबी लाइन के पेज पर जाके लिसन लाइव पर क्लिक कर ले एम 530 के सारे शोज़ न सुन सकते हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं सोमवार की सवेर के उम्मीद दिन खुशकुवार चढ़ती कला वाला निरपो निरवैर डर नहीं है किसी का तो विरोध भी नहीं है किसी का, विरोध है जुल्म के खिलाफ, विरोध है कोई ऐसी चीज़ जो किसी लिए ठीक नहीं, पर डर किसी का नहीं है, निरपो निरवैर ते दुश्मनी ते डर जड़े ने ये दो चीज़ा कमज़ोर लोग रखते हैं। फिलहाल आप नहीं है तो आप चलेंगे अगे हूँ। नैक्सट है कि रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे, यानी कि नवीं चीज़ा रोज़ जिंदगी चाहिए तुसी उन्हें लेके अगे चलते रहोगे। तो फिक्र पाकिया जरूर रेडियो आवाज़ के नाल चढ़दी कला वाल एक बार फिर जुड़ गए हो सोमवार की सवेर तो गल्लां बातां चलदी रहणगियां। संतोष मेरे नाल, संतोष जी की हाल चाल ने?
1: काफी कॉल आ रही थी रिसेंटली, काफी रेंटल दे उपर बोल रहे थे और काफी जाने बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं कि हाँ जी असी अपनी प्रॉपर्टीज इदा दे दी, काफी कॉल्स भी आ रहे हैं कि तुसी उस सोल्यूशन दसोगे, टेनेंट्स खाली नहीं कर रहा घर, सो तुसी सारे साडी टीम नूं एक बार कॉल कर सकते हो जे तुहाडा कोई क्वेश्चन है या तुहाडे कोल रेंटल प्रॉपर्टीज है। तो साडी टीम का नंबर है 416-473-42-42-416-473-42-42। जी किसी भी कोई बिजनेस सेल है साढ़े को काफी कॉल आ रही है बिजनेस वाल जाना चाह रहे हैं, सो तुम बिजनेस सेल भी सानू कॉल कर सकते हो जी किसी को कन्वीनियंस।

स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है या ड्राई क्लीनिंग स्टोर है या होर भी कोई बिजनेस हैगा तो तुसी कॉल कर सकते हो सानू 416-473-4242 ते अमन जी साडे कोल ब्रैम्पटन दे विच घर भी हैगा है, 4 बेडरूम दा घर हैगा है और बहुत ही वधिया लोकेशन है। जे किसे कोल डाउन पेमेंट विच भी प्रॉब्लम आ रही है ते जेडे सैलर आ ओह वेंडर टेक बैक दे रहे आ तो वो बहुत ही वधिया डील बन जाएगी। सो तुसी कॉल करना है साडी टीम नूं 416-473-4242 416-473-4242।

7 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचने वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन।

कैसे कमाल दे लिरिक्स आ, तेरा मेरा प्यार किते कागजी ते नहीं, साडे नाल सोहणे हो कहिंदे फिर नाराज दे नहीं है। कमाल दीआं गल्लां, देखो कागज़ जिहड़ा है उसकी एक अपनी कहिंदे हुंदे आ, कागज़ नूं की कह सकदे आ बई, कागज़ नूं पानी च पा लो ते खुर जांदा। तेरा मेरा प्यार किते कागजी ते नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਰੂਹਾਂ, ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਮ ਔਰ ਹਮ।

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड, 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
3: एक लाइफ है जिसे लव है,
4: ये कहते मुझसे सब है,
5: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: save onenergy.ca/eap

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
2: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
3: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
2: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
3: कॉल करो 905-874-9878।
4: ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ।
5: लड़िया हो या चार, बिजनेस ले जाना होवे या फिर कुमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस से। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल, 2883 डेरी रोड ईस्ट, मिसिसागा। कॉल 9056781200।
6: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
7: नहीं, मैं मर जा उठे की होने।
6: GTA दा सब तो स्वादला खाना उठे ही ता मिलता है। सही सुने भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 ऑफिस।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: अकाल डक क्लीनिंग वाले पिछले 40 वर्षों तो साड़ी कम्युनिटी की सेवा कर रहे ने। साड़ी कम्युनिटी की सब तो पहली कंपनी है डक क्लीनिंग दी। आजकल उन्होंने स्पेशल लगाए ने, खास करके ब्रैम्पटन, मिसिसागा, एथोबिको लोकल एरिया दे विच। किसी साइज का भी घर हो, अप टू 3000 स्क्वायर फीट दे डक्ट क्लीन कराओ। जी हाँ, ओनली $140। वैसे तो रेगुलर प्राइस $250 विच करते ने, लेकिन हुण उन्होंने स्पेशल लगाया डक्ट क्लीनिंग, सिर्फ तो सिर्फ $140 देवो ते अपने डक्ट क्लीन कराओ। बड़ी ही बढ़िया ढंग नाल डक्ट क्लीन करनगे, सैनिटाइजर करके जानगे। नाल दी नाल ए हर तरह दी रिपेयर करदे ने, इंस्टॉल करदे ने एयर कंडीशन ते फर्नेस। www.akalduct.com। अज ही इन्हां नूं बुकिंग वास्ते कॉल कर लो, 416-710-0662, 416-710-0662। साडी कम्युनिटी दी सब तो पहली कंपनी अकाल डक्ट क्लीनिंग पिछले 40 वर्षों तो तुहाडी सेवा दे लई हाजिर ने, ओपन 7 डेज अ वीक।
4: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
5: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
4: मैं तेनु पहला ही कहा सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
5: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
6: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
3: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुन वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव पे क्लिक कर लो, जो वाच करना चाहते हैं तो वो ते क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, उदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नु क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकते हो, वेख भी सकते हो 24/7।

0: एक चक्कर लगाओ।
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-457-3381।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा, ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। इह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नूं भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहिंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जांदी है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोल देने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumia.io, 289-982-9597, 289-982-9597।